प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हैं इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसरत तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है,

इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सोध, देही नू काढ़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है। तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट्स, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहते हैं इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

उस तो बाद क्योंकि महाराज जी ने आख्या पांडा तोहे, इस पांडे नू तोना है, इस शरीर रूपी पांडा है, अंदरों मैला होया पिया है, इसनू साफ करना है, इसलिए आत्मा नू साफ करना है। सो इस पांडे नू योग बनाना है कि इस नाम रूपी अमृत पै सके। बैस धूप देवो तो दूध देखो जावो, इस पांडे नू धोवो, सुगंधी दियो, इस दे विच वाहिगुरु दे प्यार दी सुगंधी होवे, शुभ गुणा दी सुगंधी होवे, निम्रता दी सुगंधी होवे। इस पांडे च निम्रता होवे, इस पांडे दे विच केयरिंगनैस होवे, गिविंगनैस होवे, इस पांडे दे विच फॉरगिविंगनैस होवे, माफी होवे, इस पांडे दे विच तमाम किस्म दे गुण होण, इस पांडे दे अंदर श्रद्धा होवे, कहिंदे तां इह जाके पांडा शुद्ध हुंदा है। जदों ये पांडा शुद्ध हुंदा है, तुसी एक लैवल ते ते कम कर लिया, हुण अगला है दूसरा लैवल, वो है माइंड दा। माइंड दी साड़ी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आखदे हन

ऐ मां मेरा मन मेरे वस च नहीं, साडे जिहड़े ख्याल हन वो बड़ी शक्ति रखते हैं। ख्यालों का एक ट्रैफिक है, समझ लो असी उस ट्रैफिक के दरमियान च खड़े हैं, वो ट्रैफिक सानू हिट करता है, कोई ख्याल किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है, कोई किधर नू लै जांदा है। हरेक ख्याल का अपना इन्फ्लुएंस है, कोई ख्याल सानू डिप्रेस कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू एंग्जाइटी दे दिंदा है, कोई ख्याल सानू सैड कर दिंदा है, कोई ख्याल सानू वरीड कर दिंदा है। सब ख्याल ही ख्याल हैं। मन जड़ा है वो टिकाव च नहीं है, स्टिलनेस दे विच नहीं है। बहुत ध्यान दे नाल सुनना कि मन दे नाल फिर की कीता जाए, इसनू टुकान दी की विधि है, केड़ा अभ्यास है। आओ आप जिन्हों मैं दो तीन लाइना अज अर्ज करांगा उन्होंने लैके ही प्रैक्टिस करना, ताकि सिंपल सिंपल टेक्निक्स अर्ज कीतियां जान, ताकि उन्होंने आप एक्सरसाइज कर सको। लगातार 3-4-6 महीने तक एक्सरसाइज करन दे नाल यू विल फाइंड ए ग्रेट डिफरेंस इन योर क्वालिटी ऑफ माइंड एंड यू विल अचीव स्टिलनेस ऑफ माइंड। अभ्यास की है, बाणी च इस तरह आख्या,

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए। विचार आंदा है, तुसी उस दे विच रल जांदे। पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ, विटनेस करन वाले अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ, अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी

eye on your every single thought the minute it creeps in, and what it does inside you, for how long it stays inside you, and then how the second thought is followed by. Can they try to see the whole process of thoughts coming and going? अपने विचार अस्वारी कीजिए, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत के विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरदा है उसनु देख सकते हैं। ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरदा है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरदा है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरदा है, असि अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनु वाच कर सकते हैं। टेलीविजन के उत्ते तस्वीर चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असि अलग चेयर के उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार असवारी कीजिए, अपने विचारों के उत्ते असवारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्होंने अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकोनेक्टेड यूर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप में थॉट्स को अलग कर ले, अपने विचार असवारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है, ना उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार असवारी कीजिए का मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो, कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नु करना है। अपने विचार असवारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनु देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नु देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया। बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है, की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बीइंग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बीइंग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स वधदे जाणगे। जदों गैप्स लंबे हुंदे जाणगे ते उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करन वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए एक असीं वंडर करदे हां कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी दी अंश, वो है वाहिगुरु जी दी जोत। सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नु देख रहा है, फिर असीं उसनु पावांगे उत्थे मौजूद। उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनेक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा। तो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजिए। अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ। ਕਿਹੜੀ?

से नहीं, जल्दी जल्दी दूर ये शब्द गायन करना चाहिए। मेल गुरु तिनते मोह जाए, जिस जबान बचावी उस तरह गा लिया। दूसरा शब्द है जी, प्राण के बचैया।

इतनी सेवा प्रवान कर वो धन का जो जो किया साहेब गुरु ग्रंथ साहब जी जू की कदर बैठ के हरी जस हरी कीर्तन बड़ी श्रद्धा से भावना ना सबल करो सुरदास जी अपने उच्चे मार्ग संबंध है आप वर्गी साध संगत के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया है जेड़े कि गुरु ग्रंथ साहब के रागा के शौकी है नहीं तो ज्यादातर गुरुद्वारा त्रिमी कीर्तन चलता है जिन्होंने कहते अस वे वे रागी हैं संत बनते हैं सब त्रिमी टूना गा रहे हैं महाराज बख्श कर सारे साल गुरु के बख्श बराब रखे कीर्तन सुनने की श्रद्धा बख्शन आओ अंत सरबत माई भाई जितने गुरु चरणा बैठे हो छोलियां अड़के यही अरदास बेनती जोदली करनी है अकाल पुरख अगे ईश्वर शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी आप की कृपा करो सारी छोलियां अपने पवित्र नाम की खैर पाओ जपो सारे कोई इस ना

साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का दूजा शब्द भी मन दे प्रति है। पातशाह फरमान करते हैं

रोज अरदास करदा सी, ऐ परमात्मा आओ मेरे हिरदे दे थड़े ते बैठो। बेनतियां करदा रहा। एक दिन परमात्मा ने बेनती सुन ली, आ गए, कह लगे खोल भाई बुआ तेरे हिरदे दे थड़े ते बैठी है। जां बुआ खोलिया, इस हिरदे दे सिंघासन ते बहुत भीड़ कठी हुई हुई, किधरे ईरखा बैठी है, किधरे क्रोध बैठा है, किधरे होमे, किधरे लोभ, सारा थड़ा भरिया होया। परमात्मा ने पूछा बिठाएगा किथे, थड़ा तो तेरा खाली नहीं, एक वस्तु नू कढेगा तां दूजी नू पाएगा, मैनू बिठाण लई किथे था, थड़ा ते सारा भर के रखिया होया। कह लगा लै ए तां गल भुली गई सी। आया क्रोध दी बांह फड़ी बाहर छड़ आया, फिर आके काम नू बाहों फड़िया, गलों फड़ के बाहर छड़ आया। जा मुड़ वेख दे क्रोध उथे ही बैठे, मोह दी बांह फड़ दे बाहर छड़ आउंदे, फिर अहंकार नू बाहर छड़न आउंदे, फिर वेख दे मोह उथे ही खड़े। ए विचारा बाहर अंदर सारयां नू कढ़दा रहा, एक एक नू कहन लगा निकलो मैं परमात्मा आ गए उनू बिठाने। ओ कहन लगे ओ परमात्मा ते तेरा अज आया, असी तेरे कई जन्मा जन्मा दे साथी, इनू नहीं छड़ सकते। परमात्मा ने आख्या चंगा तू इन्हां नू बाहर कढ, फिर समा होवेगा आवांगे, आके बैठांगे, तेरा थड़ा खाली नहीं, हुण जदों थड़ा खाली होया फिर आवांगे। इंतजार करके परमात्मा वापस चला गया। हजूर कहंदे ने हुण समा है तौबा कर इन्हां गुनाहां तों, अते वाहगुरु दे अगे कर अरदास।

बिन सिमरन भय कुकर काम। सिमरन तो बिना इंसान नहीं काम ही कुत्ता है। आख्या कहने ने जून पोगरे बिन सिमरन भय कुकर काम साकत।

के जितैया रंग पूम के पवैया पार पूम के मटैया नाच तीन लोक गाइया कहूं के तनैया है न मैया जाके पैया हूं छोण हो के चुआ कोड जादू पीत लाइया साधना सदैया धूल तन।

फिटके से फिटे गुरु बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर चौ

हमारी जेबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समरथ वड़ा वड्डी हूं।

0: निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा,
1: सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा,
0: अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा,
1: ऊंचो ऊंचा,
0: ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान,
1: ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान,
0: तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा,
1: तेरे भक्त सोहे दरबारे,
0: तेरा थान सुहावा,
1: तेरा थान सुहावा,
0: धरत सुहावी ताल सुहावा,
1: विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा,
0: हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया,
1: संत भगत गुण गावे राम,
0: हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते,
1: निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते,
0: हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को

जन नानक को हर बख्श रे हो, जन नानक को हर बख्श रे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे इयानिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुठे मेल मिला हर कृपा का।

0: बाले बाले जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोए करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन से प्रीत बनी रहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

मानस जन्म अमोलक पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात्यो कौती बदला का दूरी को गाहक आयो, लाद्यो कल बिरख जिबा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई, मोहन ठगावी क्यों पुरज पहा, मोहन ठगावी।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोठ महला
1: चौथा।
0: सब मिलके करो कीर्तन।

कितने भी चंगे कर्म कर लवे, ओदे कर्म कीते होए सारे निष्फल चले जांदे हैं। जिवें कि 68 तीर्थां दा इशनान, परोपकारी जीवन बतीत करना, बहुत सारा दान पुन करना, बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस